0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 3D ਇਲੂਮੀਨੇਟਿਡ ਸਾਈਨ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੁਇਕ ਸਾਈਨੇਜ ਨੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਲੋਇੰਗ ਸ਼ੌਪ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲ ਰੈਪਸ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨੇਜ ਲੀਡਰਸ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓ। ਕਾਲ 1300 1516 16, quicksignage.com.au।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: हाँ जी।

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: किचन का स्टाइल डल लग दा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने हैं डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
1: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
2: की होया
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733
2: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
0: हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
5: हां जी हां जी,

कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा ताजा रहती हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने के लिए दिल हमेशा बेचैन सा रहता है। ऐसे ही चंद लम्हे और कुछ गीतों के साथ मैंने अपना बचपन, मैंने अपना जीवन गुजारा है और आज भी ये गीत मेरे दिल के करीब है, क्लोज टू माई हार्ट।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 20 flights Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan किते भी जा सकती है।
4: Attention please, दिल कहता है कर जाना है, flight search करके थक गए, switch करो Hi-Fi Travels से, your local travel agency, rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 या online book करो hi-fi-travels.com.au से।

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर्न मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11, davidavis.com।
0: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
4: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पैसा, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
0: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सीधे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट, पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
5: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: सोना चाहिदा,
7: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
8: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
9: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
10: हाँ जी रेडियो

0: ਓਪਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਸ ਵੀ ਰੋਕੇਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ।
1: ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰੀਬੇਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ।
0: ਫਿਰ ਲਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ?
1: ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। 2012 ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ।
0: ਅੱਜ ਹੀ ਸਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 0406-021-246 ਤੇ।
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
3: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
4: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 20 flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
3: Attention, please. Din kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hifitravels.com.au te.
5: दिल्ली विच करे मेरी भैन, वो बस एक रंग देख के समझ आती है कि उसनू अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है। इसलिए भावे तुहाडी भैन नू अपनी पसंद चुनने लई वक्त लगता होवे जां उसने पहला ही अपना मन बना लिया होवे, रिमिटली राही अपने घर पैसे भेजना सिर्फ एक लैण देण नहीं है,

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: दिल्ली में घर पर मेरी बहन बस एक रंग देखते ही समझ आती है कि उसे अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है, तो चाहे वो उस बहन के लिए हो जो चुनने में थोड़ा वक्त लगाती है, या उस बहन के लिए जो पहले से अपना मन बना चुकी है। रिमिटली के जरिए पैसे भेजना सिर्फ एक मनी ट्रांसफर नहीं, उससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि जब पैसा आगे बढ़ता है तो जिंदगी भी आगे बढ़ती है। रिमिटली, दुनिया भर में पैसे भेजे।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत, एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना कार लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तब टेंशन क्यों, टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम, कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लैंडिंग।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: क्यों होया,
2: इत्थे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चक्को, कॉल करो वीवाई इमीग्रेशन नु, जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने, हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
4: आ किथे वज गई तेरी गड्डी,
5: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे।
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने, इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथोराइज्ड काम अते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: प्राणलाल मुथुट 11 रुपए, डॉक्टर बीडी शाह 21 रुपए, इंदर मेडिकल स्टोर 51 रुपए, सबोदय ज्ञान इंटरनेशनल 101 रुपए, कांति शरण मुद्गल 101 रुपए।
1: हैं?
0: गलती मारे से भी तो हुई है ना।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी। ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों, टू फोल्ड लैंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लैंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लैंडिंग।
3: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पैसा, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉन स्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध, नियम और शर्तें लागू।
4: सोना चाहिदा,
5: परोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493 53

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालों तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300151616 quicksignage.com.au।
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालों तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
6: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
5: फिर लवाइए कित्थों?
6: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
5: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
7: लादे

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

वर्कर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।
0: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
3: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11, davidavis.com.au।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. Thirdly, flights Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
3: Attention, please. Dil kehta hai kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo Hi-Fi Travel se. Your local travel agency, rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hifitravels.com.au te.
4: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
5: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
6: हाँ जी, ओए हाँ जी,
7: रेडियो।

0: हाँ नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
0: ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
2: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
0: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
3: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
2: सोना चाहिदा,
3: परोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।

0: प्लीज दिल कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से, योर लोकल ट्रेवल एजेंसी रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर, फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 ते या ऑनलाइन बुक करो highfivetravels.com.au ते।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।

0: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिकृत।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना कार लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना? होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
2: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1, 670 चैपल स्ट्रीट साउथ यारा, daviddevis.com.au।
3: ओपाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
4: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
5: फिर लवाइए किथों?
4: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
5: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
6: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े कर बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओवी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनालिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
7: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें 4 चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
8: सोना चाहिदा,
9: भरोसा चाहिदा,
8: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
10: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नू आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक एसईसी आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 Lonsdale Street, Dandenong। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493536

0: ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਆਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਸ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
1: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
2: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11, daviddavis.com.au।
3: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4-5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस
4: जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
5: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
6: पिछले साल काम वाली थां ते होए एक हादसे विच मैं बुरी तरह झुलस गया सी। हां, ये समा औखा सी, पर मेरे काम वाली थां तो मेरा हाल चाल ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ।
7: ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਵਰਕ ਸੇਫ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਵਰਕ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
4: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
5: हां

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: थोड़ी मोटी नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सोखा अति सुरक्षित बनाउंदा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: ਪਾਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਸ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ।
4: ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰੀਬੇਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ।
3: ਫਿਰ ਲਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ?
4: ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। 2012 ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ।
3: ਅੱਜ ਹੀ ਸਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 0406-021-246 ਤੇ।

0: दिन भर दे कम्मा कारा च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनों च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रॉसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 04-91-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। हाँ जी।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल
2: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़े नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस We'll be right back.

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आएंगे लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
1: बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान, बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट,
2: फिर लवाइए कित्थों?
1: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0400

की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।

0: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com।
1: मैंने अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4-5 दिन विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 साल तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नु चमकाओ, कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au।
2: We might all be different, but one thing unites us. We're all Victorians and we all deserve a say in its future. Are you ready to vote this state election Saturday 28 November? Not sure? Check your enrolled online. If you've changed your name or address, update your details. And if you've turned 18, you must enroll. So come on, Victoria. Make sure you're enrolled by 8 p.m. Tuesday 3 November and make your voice heard. Visit vec.vic.gov.au to enroll today. Authorised by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
3: Haan ji, haan ji, yo haan ji, haan ji.
4: Haan ji, radio.

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत, एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: तुहाडे मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
3: की होया
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनिना अते 347 डॉन स्टेल स्ट्रीट डेंडीनोंग ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: टेंशन मेरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733
2: VY Immigration and Education Consultant।
1: हर कदम तो आड़े नाल।

0: खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए नी लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
1: बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान, बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए कित्थों?
1: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406 021 246 ते।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटां ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होन आकार हुक्म न केहा जाई, हुक्मी होमन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्म

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होए असगाह, नानक भगता सदा विगाह, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाय, जे को कह पिछे पछताए, कागत कलम न लिख।

जाने मन कोई, मन्नै सुरत होवे मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोचो टाने खा, मन्नै जाम कै साथ न जाय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मन्नै

ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवे सचियार तौले उपर केता पार धरती होर प्रै होर होर तिस्ते पार तले कमन जोर जी जात रंगा के नाव समना लिखिया बुढ़ी कलाम ए लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होय केता तान स्वाल्यो रूप केती दात जाने कवन कूत कीता।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाक खाए।

पाताल लख आकाशां आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न वेखन सुनन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे तां के अंत न पाए जाए ए अंत न जाने को बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तुमाए केते मंगे जोत अपार केत्या गंत नहीं विचार केते खप टुटे वेकार केते लैलै मुकर पाहे केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए ओ जाने

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्रीमुख वागपात सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जाति हर पात नहीं जाय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तेर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व द्याले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां बरनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेशय के आभिज भेषय के आगाज कर्मय के आभंज भरमय के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्णय के बेपूत करणय के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्णय के सर्वा अवर्णय के जगतंग कृति हैं के छत्रंग छत्री हैं के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनूपे के आद अदेव हैं के आप अभेव हैं के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीमय के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदामे गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज उल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीम उल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिबादे अगजे अगाधे शुभंग सर्वभागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंद है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तौ प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तौ प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछ जुगात अज जनवाद अनछन जुगात अनरंजवाद अनटुन पंडार अनठंड अपार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले अर काले है कल खंडर है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंग पार है सर्वंकार है सर्वपासी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कृताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच को सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही।

दुख सबै तुम कहावो, आप हाथ दै मोहि बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर इच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर जाओ सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरिया स्तुजो करियो रच्छा, राख

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर्ष करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किच पेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह भी सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फूर राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

माया अगन सावी को जई करता खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर

राग है। महला पंजवा गुरु नानक पातशाह जी दे पंजवें स्वरूप गुरु अर्जन देव जी महाराज दा

प्रेम भगत ताका मनडीना नौ प्रकार दी भगति है। भगत नवे प्रकार नौ प्रकार दी पर बाणी दे अंदर प्रेमा भगती नू थां दित्ती गई है क्योंकि गोविंद भाव भगत दा भुखा। रब केवल ते केवल प्रेमा भगती करन वारिया नाल ही प्यार करदा है। ते महाराज आखदे ने प्रेम भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन भावै। जिस दा मन वाहिगुरु परमात्मा दी प्रेमा भगती विच लीन हो जांदा है, वाहिगुरु परमात्मा नूं या वाहिगुरु परमात्मा उन्हूं मन

संगत वैसे तो हर बंदे ने भगती करनी, बंदा मुसलमान होवे, बंदा हिंदू होवे, बंदा सिख होवे, बंदा ईसाई होवे, बंदा तो बंदा ही ना। ते महाराज ने इसे वास्ते आख्या कर बंदे तू बंदगी, कर बंदे तू बंदगी। कदों तक? जिचर घट मैं सौ, जदों तक तेरे अंदर सुवास हन। वाहिगुरु परमात्मा की भगती कर बंदा है ना। ते विद्वान आखदे ने बंदा उदों तक ही बंदा है जदों बंदगी करदा है, बंदा उदों तक ही बंदा है जदों तक बंदगी करदा है। तेरे तो विद्वान कहते ने गंदा ही गंदा, इंदे वर्गा गंदा होर है ही कोई नहीं। जे बंदगी करेगा बंदा, ते जे बंदगी नहीं करदा गंदा। महाराज कृपा करदे ने जिन्हां दा मन वाहिगुरु परमात्मा दी भगती विच लीन हो जांदा, लीन जिहड़े अरदास करे ने तेरी परे खुदाए तों बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। मैनू खैर दे, मेरी झोली विच पा की बंदगी दी दात, बंदगी मैनू जीवन दे अंदर प्राप्त होवे। क्योंकि जिन्हां दा मन वाहिगुरु परमात्मा दी भगती विच लीन हो जांदा है, वाहिगुरु परमात्मा उन्हां नूं चंगा लगदा है, उन्हां दे मन नूं पा

सतगुरु कृपा कर देने, संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पै साथी, जिन्ना नू मालक अपने नाल मिला लेंदा है, जिन्ना अंदर नाम निधान है, गुरबाणी विचार तिन के मुख सद उजले ते सच्चे दरबार, तिन बहिंदियां उठदियां कदे ना विसरे, जे आप बख्शे करतार गुरमुख मिले ना विछड़े, हर मेले सृजन हार। महाराज कृपा करदे ने, जेड़े मिल जांदे ने ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। सोमवार की सुबह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ कीजिए अपने दिन का आरंभ। मित्रों, आप में से कितने लोगों ने अपने आसपास समझदार पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कथा कहानियां हैं? क्योंकि अगर भगवान सच में होते हैं तो वह इतना बुरा होते कैसे देख सकते हैं? इतने क्राइम हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं बाढ़ कभी सुनामी आ रही है, दुनिया में कितनी गरीबी है, लोग परेशान हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं, किंतु इनका तो कोई हल ही नहीं हो रहा। क्या आप भी यही मानते हैं कि भगवान, रब, परमात्मा, ईश्वर, ये सब मनगढ़ंत कथाएं हैं, कहानियां हैं, या काल्पनिक किरदार हैं, चरित्र हैं? चलिए इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sara Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Abhi ek border chal rahi hai.
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
6: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
7: Ne bete ke liye justice chahiye.
8: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
6: Drishyam the conclusion. Starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar and many more.
9: Is baar khatra kab kaise aur kahan se aayega batana mushkil hai.
6: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
9: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
6: Overseas release by Z Studios.
10: Ki chahida? Australia da visa launa ja visa layi mashwara chahida? Mil juga. Sidde aao Garewal Visa Solutions. Australia vich har tarah diyan visa loda layi ik parose yogna. Jo study visa, skilled visa, employer sponsored visa, dama, parent partner te visitor visa vich deal karde ne. Hun hi call karo Pritinder Garewal nu 0490054596. garewalvisasolutions.com.au te jao. आओ थोड़ा कोई हल करिए।
11: टूट पैणी इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नू।
12: है पुत पहला मैनू अंग्रेजी बोल के दिखा।
13: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली। ही हैव फोर लेग टू ईयर टू आई वेरी गुड शी वेरी फास्ट काओ।
14: हुण मेरी जठानी नू पता लगू कि साडे घर भी अंग्रेजी आ।
15: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
16: ना पुत। इंसान नू परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। जीवन में दुख ही दुख है, यही सोचते हैं ना। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। पानी का धर्म क्या है? गीला करना। स्विमिंग की है कभी आपने? आप पानी में उतरना चाहते हैं, किंतु चाहते हैं कि आप गीले भी ना हो। आपको तैरना भी नहीं आता, फिर भी आप चाहते हैं कि आप डूबे नहीं। किंतु पानी का स्वभाव तो गीला करना है। अगर तैरना नहीं आता तो आप डूबेंगे ही डूबेंगे, इसमें पानी का कोई कसूर या गलती है क्या? किंतु जिसको तैरना आता है वह पानी में जाता है, गोते लगाता है और पूरा आनंद लेता है तैरने का, क्योंकि वो तैरना जानता है। अब इसमें कोई समझदार व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पानी में कसूर है। पानी ने देखो एक व्यक्ति को तो डुबो दिया, मर गया बेचारा, और दूसरे को तैरने दिया, जबकि पानी दोनों के लिए एक समान था, समभाव था। फर्क था तो सिर्फ हमारी क्षमता में। एक को तैरना आता था तो वो आनंद में रहा, और जिसे तैरना नहीं आता वो डूबेगा ही डूबेगा, उसे दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह प्रकृति में सुख और दुख दोनों हैं। दुख और सुख दोनों के बीच हम कैसे सही कर्म करें, ये बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

0: सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: टुट पैणी इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नूं।
2: है पुत, पहला मैनू अंग्रेजी बोल के दिखा।
3: I have many cow, but favorite best cow Lali. He have 4 leg, 2 ear, 2 eye. Very good, she very fast cow.
2: हुण मेरी जठाणी नूं पता लगू कि साडे घरे वी अंग्रेजी आ गई।
4: तुसीं अरदास वी अंग्रेजी च करदे हो?
3: ना पुत, इंसान नूं परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी आ।
5: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
6: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
7: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
6: The end we've been waiting for. दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
6: Overseas release by Z Studios.
10: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
11: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
12: Desh bhakti to yaad aa gayi.
13: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
10: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
14: Ye border chal rahi hai.
10: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
0: Aap sun rahe hain Punya Darshan.

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो मित्रों, जब भी आपके मन में सवाल आए कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, दुख सुख, सुख में तो खैर भगवान को हमने याद करना छोड़ ही दिया है, लेकिन दुखों का जब पहाड़ आता है या छोटा सा सर दर्द भी हो जाता है तो सीधा दोष भगवान पर, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया तुमने। किंतु एक पल रुककर स्वयं से सोचिए,

की परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, किंतु उन परिस्थितियों में हमारा कर्म और हमारी चेतना ये हमारे हाथ में होता है। आज की कलयुगी भागती दौड़ती दुनिया में हमारी सोच में ही एक बहुत बड़ी भूल है। हम भगवान की तरह बनना नहीं चाहते, मतलब कि हम भगवान शंकर, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जिसको भी आप भगवान कहते हैं, उन सबको मानते तो हैं, किंतु उनकी नहीं मानते, यानी इनकी तरह जीवन जीना नहीं चाहते। जबकि इन सभी ने समय समय पर आकर इस धरती पर हमारे बीच रहकर खुद संसार में आकर प्रैक्टिकली हमें दिखाया है कि दुख सुख, सही गलत और तमाम परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी मनुष्य कैसे निष्काम कर्म कर सकता है, निर्लिप्त रह सकता है और कैसे अपने कर्तव्यों को कर सकता है। ये संत और अवतार केवल हमसे अपनी पूजा करवाने नहीं आए, ये हमारे सामने एक जीवन का उदाहरण रखने आए हैं कि हमें देखकर सीखो, हमें समझो और अपने जीवन को भी उसी दिशा में ले जाओ। किंतु हमने क्या किया, इनको प्रणाम किया, मंदिर में रखा और अपने जीवन से किनारे कर दिया। मित्रों, अगर एक किसान को उपजाऊ भूमि दे दी जाए तो वो उस पर निर्भर है कि वो उसके अंदर अनाज पैदा करेगा या कटीली झाड़ियां। जैसा वो बीज बोएगा वैसा ही तो फल पाएगा, यही हमने सीखना है। पशुओं में और मनुष्यों में दुख सुख हैं, समान हैं, किंतु मनुष्यों में बुद्धि है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल धीरे धीरे हमारे जीवन में आता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता, वो तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठकर केवल हमारे कर्मों के साक्षी बनते हैं और जैसा कर्म हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: this autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aa gayi.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Ab ye border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Kitchen the style dull lagda? Bathroom vanity simple jya. Hun tension khatam karo. Aa gaya ZJ Stone Mason. Party karnu banaye ekdam classy. Assi banaune aa designer stone bench tops for kitchen, stylish vanity ate modern laundry, OV porcelain ate marble nal, jithe elegance mildi hai durability nal, aur na sirf kar par tuhadi personality bhi shine karegi stone de style nal. Call karo 0410 045 555 ya aaj hi visit karo 104 Collins Road, Melton.
6: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
7: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
6: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
6: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
6: Overseas release by Z Studios.
10: टुट पैणी इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नू.
11: है पुत, पहला मैनू अंग्रेजी बोल के दिखा.
12: I have many cow, but favorite best cow Lali. He have 4 leg, 2 ear, 2 eye. Very good, she very fast cow.
11: ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ.
13: ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ?
14: ਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

रेडियो हांजी सुन रहे सारे श्रोतियों नूं रणजोत सिंह वल्लों सत श्री अकाल आदाब सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग। आस करते हाँ सारयां दा दिन बहुत ही सोहना चढ़िया होगा। एक बार फिर तो हसते मुस्कराते ढेर सारिया आसा उम्मीदा अज के दिन तो ला के निकल तुरे हो गए घर तो फिर चल रही होनगियां तैयारियां जिथे भी कितने वो आस करते हैं राजी खुशी हो गए चढ़ती कला च हो गए उस रब का शुकराना कर रहे हो गए जिन्हें अज का सानू ये दिन दिता जिन्हें चढ़ती कला दिती है सवास दिते ने सोहनिया सांझा एक बार फिर पईआं आओ इन्हों सांझा दे लई इन्हों चल रहे सवासा दे लई ढेर मिलिया नियामतों के लिए शुकराना करिए। अज का दिन तुहानू ढेर खुशियां दे के जाए अड़े फड़े काम तुहाडे नेपरे चढ़न जो भी वीकेंड का बोझ है जो भी भार है जो भी उदासी है सब दूर होण। अरदास सारे सरबत दे भले दी अज सोमवार का दिन हफ्ते की शुरुआत है तो आओ खिड़े मिथे इस नवे हफ्ते जी ऐ आखते अज का दिन होर भी करमाला हो जाता जो अज के दिन धन धन श्री गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत देव सर सवास करते हैं कि सब राजी खुशी हो गए चढ़ती कला दे विच हो गए तो अज के दिन के लिए उस रब का वो शुकराना करिए। शब्द कीर्तन का सरवण करते हैं तो मिलते हैं होर भी बहुत सारिया ढेर सारिया गलां बातों के लिए रेडियो हांजी 1674।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 20 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है।
0: Attention, please. दिल कहता है कर जाना है। Flight search करके थक गए। Switch करो Hi-Fi Travel से। Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 ते या online book करो hi-fi-travels.com.au ते। Kitchen का style dull लगदा? Bathroom vanity simple जिया? हुन tension खत्म करो। आ गया ZJ Stone Mason. पार्टी करनो बनाए एकदम classy. असी बनाने आ designer stone bench tops for kitchen, stylish vanity अते modern laundry. ओ भी porcelain अते marble नाल, जिथे elegance मिलती है durability नाल। और ना सिर्फ कर पर तुहाड़ी पर्सनालिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।

0: Sevmiş abi sonra güncel yana.
1: Evet.
0: O cebim cennet. Ben de dedim deni falan ya.
1: Hı.
0: O puranı ya.
1: जिन डब कड़ बजा हो गया ना तो ठंडा हो गया होना। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सन साढ़े नाल लाल जी ते हुण इजाजत लैन का समा हो गया जी तुहाडे कोलों लाफ्टर थैरेपी दे विचों। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लक्किया सी जी कहिंदे ने कि रब जो करदा चंगे लई करदा। सोचो जे इंसानां दे कन्न ना होंदे तां मास्क लगाउण लई किल ठोकणे पैणे सी। थैंक यू जी, थैंक यू लक्किया सी जी, बहुत सोहणे, बहुत वधिया। जसपाल जी सति श्री अकाल, गुड मॉर्निंग भेजते ने, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। ते राकेश कुमार जी कहिंदे ने कि सरबत दे भले दी अरदास करदे आ ते तुहानू तुहाडे स्रोतियां नू चंगी सेहत तंदरुस्ती चढ़दी कला दी अरदास। हसदे वसदे रहो, मुहब्बतां दा हर पासे वास होवे ते मनोकामनावां सब दियां पूरियां होण। परत तों पाउंदे ने सांझा ते हुण तुहाडे कोलों लैंदे आ इजाजतां। हसदे खेडदे चढ़दी कला च रहो, सुनदे रहो रेडियो। हाँ जी 1674 AM।

0: vyimmigration.com.au.
1: Yaad rakho 9077-9733.
0: VY Immigration and Education Consultant.
1: Har kadam tuhade naal.
2: Ek prarambhik balyavastha shikshak ya prashikshak ke roop mein aap bachchon ke jeevan ko aakar de sakte hain. Aap apna career bana sakte hain. अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
2: पुलिस बूज बस के लिए बाएं मुड़े सांस की जांच उपकरणों वाली पुलिस मोटरसाइकिलों के लिए दाएं मुड़े जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
3: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
4: दिल्ली विच करे मेरी भैन वो बस एक रंग देख के समझ आती है कि उसनु अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है। इसलिए भावे तुहाडी भैन नु अपनी पसंद चुनने लिए वक्त लगता होवे जो उसने पहला ही अपना मन बना लिया होवे। रिमिटली राही अपने घर पैसे भेजना सिर्फ एक लेन देन नहीं है क्योंकि जिथे पैसा अगे बढ़ता है उथे जिंदगी अगे बढ़ती है। रिमिटली दुनिया भर विच पैसे भेजो।
5: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
7: हुन टेंशन छड्डो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट।
5: फिर लवाइए किथों?
7: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
5: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
8: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India, ya Pakistan. Sydney to India, ya Pakistan, kithe bhi ja sakdi hai.
3: Attention, please. Dil kehnda hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travels te. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo. 1300-533-311 te. Ya online book karo. hifitravels.com.au te.
4: Maine nahi सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
3: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: पुलिस बूज बस के लिए बाएं मुड़े। सांस की जांच उपकरणों वाली पुलिस मोटरसाइकिलों के लिए दाएं मुड़े। जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
3: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
4: दिल्ली विच करे मेरी बहन, वो बस एक रंग देख के समझ जाती है कि उसनों अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है। इसलिए पावे तो अड़ी बहन नू अपनी पसंद चुनने लिए वक्त लगता होवे, जो उसने पहला ही अपना मन बना लिया होवे। रिमिटली राही अपने घर पैसे भेजना सिर्फ एक लेन देन नहीं है, क्योंकि जिथे पैसा अगे बढ़ता है उथे जिंदगी अगे बढ़ती है। रिमिटली, दुनिया भर विच पैसे भेजो।
5: यार तू इतनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं,

0: नंबर दे बांसल इमिग्रेशन वालिया दा।
1: हाँ जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाने लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
4: फिर लवाइए कित्थों?
3: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
5: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
6: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
7: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उनां दे 5 साल दे होण तों पहलां ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3 अते 4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तों पहलां 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन, जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवें दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
8: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
9: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
8: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 4229058860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
2: या खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनेना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
5: ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ, ਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ, ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੋਮਰਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 0390866655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
2: खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
0: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
4: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-55 और विजिट tireforce.com.au।
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
5: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
6: टेंशन मेरी टेंशन
7: की होया,
6: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
7: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
6: या 90-77-97-33
7: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
6: याद रखो 9077-9733।
7: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
6: हर कदम तो आड़े ना।